यही मेरा जामो मीना, यही मेरा तूर सीना, मेरे खून का बहर अहमर, जरा देखना संभल कर। हा ही सेज, ये तड़प तड़प के जीना, द पर्सन इज लिविंग बट इज लाइक हाउ द फिश इज आउट ऑफ आउटसाइड वॉटर एंड इट इज फ्लैपिंग अराउंड ऑल द टाइम। इन द सेम वे दिस पर्सन हु हैज गॉट अ हार्ट, ही इज ऑल्सो गॉट डिजायर्स इन हिज हार्ट।

मुझको जीने का सहारा चाहिए, गम तुम्हारा दिल हमारा चाहिए। बहरे उल्फत का

हवा वो हिरस वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं? हाउ लॉन्ग एम आई गोइंग टू लिव अ लाइफ ऑफ सिंस ऑन द सर्फेस ऑफ दिस अर्थ? हाउ लॉन्ग एम आई गोइंग टू बी walking like a hypocrite and munafiq on the surface of this earth? How long am I going to remain disobedient to my beloved Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam on the surface of this earth? How long am I going to use the bounties of Allah tabaraka wa ta'ala for His disobedience? How long am I going to be heedless and negligent with regards to the hereafter? गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं? बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। या अल्लाह चेंज दिस रूट ऑफ माइन, आई हैव टेकन द रॉन्ग रोड, पुट मी ऑन टू द राइट रोड। हवा वो है।

हमारा नहीं है। समंदर का साहिल पहाड़ों का दामन, समंदर का साहिल पहाड़ों का दामन, बजुज आह के कुछ हमारा नहीं है। So we have heard this many times. But can we take qasam and say that indeed the waves of Allah Ta'ala's muhabbat flows above our hearts? That love of Allah Ta'ala, that ishq and